जीवनयाता शीतलता की माँ, जीवनयाता जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवनया पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम, छेगु जीवनया सदायम पासा, किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पं छिगु जीवन या पला पला निपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन या त शीतलता दिम, जीवन या त जीवित यै म, अलिना प छिगु जीवन या पला पला न्हि पुकि म। किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा। किप्स 98.3 एफएम।

0: तीस वर्ष देखि इन्टरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंग मनसँग जोडिएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंग.
1: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
2: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
1: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: life-changing quotes. अरुलाई घृणा गरेर म आफ्नो आत्मालाई संकुचित र नीच बनाउँदिन। यो भनाई हो बुकर टी वाशिंगटन को।
1: टिप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
2: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
1: एवरी फ्राइडे 12 PM।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: are listening to Kids 98.3 FM.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरू मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज

0: চেচাম গুটু খেলে।
1: নেপাল ভাষায় ন্যায় পুষেচং মেতা।
2: সুথেয়া 6:30 থেকে 7 বাজে তক। স্টেশন কিপস এফএম 98.3 মেগাহার্টজ।
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: इन्जिनियर साहब, घर बनाउन खोज्दैछु, कुनै इँटा राम्रो होला?
6: अरु होइन, ये एसी लाइट ब्रिक नै रोज्नुहोस्।
5: किन एसी लाइट ब्रिक नै?
6: यो हल्का मजबुत र ठुलो आकारको हुन्छ जसले खर्च घटाउँछ, निर्माण छिटो र भूकम्प जोखिम कम गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले घर गर्मीमा चिसो जाडोमा न्यानो राख्छ।
5: वाह, मैले खोजेको जस्तो रहेछ।
6: स्ट्रङ लाइट एन्ड स्मार्ट एसी लाइट ब्रिक फ्याक्ट्री मलिकु धादिङ। फोन 01-591-3596 98-012-3544.

0: तीस वर्ष देखि इंटरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंक मनसंग जोड़िएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स में पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाड़ी बस ट्रक एक्सकावेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
5: Namaskar!
6: Namaskar!
5: Kahiye, kya sunenge aap?
7: Enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
8: Bollywood Golden Hits.
7: Every Monday and Friday 10 p.m. Sunday and Tuesday 4 p.m.

0: ब्याट्रीहरुको एक्सचेन्ज सुविधा। तपाईका पुराना इन्भर्टर ब्याट्रीहरु ल्याउनुहोस् र नयाँ ट्युबुलर ब्याट्रीहरु लग्नुहोस्। साथै तपाईको इन्भर्टर युपीएसहरु मर्मत समारका लागि सम्झनु होला।
1: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: Raja Motiwa Motina Yewa Ni Pushi Changutu Kele
5: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेता
6: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
7: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजार
8: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
9: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
8: गजल संसार
9: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
0: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे।
10: नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स 98.3 एफएम।
11: हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ यो किप्स एफएम 98.3।
12: सुजल अप्पा अनि गिन नमस्कार किप्स 98.3 एफएम।
13: यो हो किप्स 98.3 एफएम। तपाईं सँगको सहयात्रा।
14: Just move your feet. Enjoy the dance beat.

0: यो हो KIBS 98.3 FM तपाई सँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट KIBS FM 98.3

0: साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
3: Chandan sabadan, chanchal jitvan, dheere se tera ye muskaan.
2: Bollywood golden hits.
4: Kaya bali pyar ka dushman hai.
2: Every Monday and Friday, 10 p.m. Sunday and Tuesday, 4 p.m.
4: Hey!

0: 7장 어떻게
1: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेत
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
3: योहो किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मिक्स मैक्स एट 98

0: Mix Max at 98.3.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: 妈，
1: 爸爸爷爷，
2: 新的有人叫 Tips 98.3 FM。
3: केही नौलो
4: रोचक
3: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
4: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा
5: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
6: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजार
2: Hits 98.3 FM मा गजल संसार
3: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
2: गजल संसार
4: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
5: Stay connected with your favorite station keeps FM 98.3 megahertz
6: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
5: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
7: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, happy gadi, bus, truck, excavator. ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
8: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
9: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
6: सिंपल Say yes to radio advertising.
9: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
9: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: पेस्कुसात अबने पालभरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्.
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर.
1: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी.
2: Best romantic Hindi song.
3: Best romantic Hindi song.
4: Dil diyan galla karange naal naal.
2: Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m.
5: Pehla nasha pehla khuma.
2: Station Gifts FM 98.3 MHz.
5: Naya pyar hai naya intezaar.
6: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ
7: के
6: ई
7: ई बी
8: एस
9: किप्स 98.3 FM योर कम्पानियन.
10: साताको 10 उत्कृष्ट गीतहरुको काउन्टडाउन शो
11: किप्स मोस्ट वान्टेड.

0: Life-Changing Quotes. बुद्धि र चरित्र साँचो शिक्षाको लक्ष्य हो। यो भनाई हो मार्टिन लुथर किङ जुनियरको।
1: द विकली काउन्टडाउन शो अफ टप 10 इङ्लिस नम्बर्स विथ एक्सक्लुसिभ सेगमेन्ट्स, क्लासिक चोइस, इन्फो हाउस, फ्रेश हिट्स एन्ड मेनी मोर। डु ट्युन इन टु विकली 10, विकली 10.
2: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m. and Thursday 2 p.m.
1: on KIPS 98.3 FM.
3: Phul ko dale dale ma timro roop ko lale.
0: Nepali chalchitra ka sada bahar geet haru.
4: Mero nindra ho ka tirkha raat rajina ko. Kina chore.
0: Wednesday and Saturday, 2 p.m., Thursday, 10 p.m., only on KIPS FM 98.3.
5: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma painchha, motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, hatti gadi, bus, truck, excavator, ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
6: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
7: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत। जस्ट ट्युन इन रेडियो नया जेनेरेसनको।
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: अब इन्टरनेट ढिलो होइन, छिटो, स्मार्ट र सुरक्षित।
0: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा।
11: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट।
0: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित।
11: हानिकारक साइट, असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
10: सुबिसु, छिटो पनि सुरक्षित पनि। थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
12: 01-42-35-888 98-12-35-888
13: Enjoy the cover version of your favorite songs. Covermania at 98.3. Covermania at 98.3.
12: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
3: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마르폿 Just tune in radio 나야 generation 고 generation 고
4: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
6: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
7: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
6: गजल संसार
8: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
0: KIPS FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.
1: Every Saturday 10 a.m., Monday 6 p.m. and Friday 2 p.m.

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.